0: 92.7 थर्ड एफएम के गेट और सिरी 93.7 थर्ड एफएम की नॉन Let's come up, Joe. Mr. Yoso, dancing was brought to you by Presto Creams.
1: Gigu tum na ba?